पल जिंदगी का बस धुआ है, न जाने सुकून ये जिंदगी अब कहाँ है। वही सुकून तलाश करेंगे हमारे साथ और सुनेंगे कुछ दिल को छू जाने वाले गाने। सुनते रहिए रेडियो नगर 90.4 FM, आवाज तुमसा।

कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। हे घोषवाक्य लिहिला है संगीता अकोलकर यांनी। ऐकत रहा रेडिओ नगर 90.4 FM, आवाज तुमचा।

0: रसिक हो, रेडिओ नगर 90.4 FM तुमच्यासाठी घेऊन आले आहे संगीत आणि मानसिक आरोग्याची सांगड घालणारी विशेष मालिका स्वर संजीवनी। गायक आणि सादरकर्ते सुहास जोशी। मधुमेह, पित्त अशा अनेक विकारांवर लाभदायक तसेच दैनंदिन काळजी आणि ताणतणाव कमी होण्यासाठी या स्वर संजीवनीचा नक्की उपयोग होईल। ऐकायला विसरू नका स्वर संजीवनी, सोमवारी रात्री 9 वाजता आणि पुन्हा प्रसारण गुरुवारी रात्री 10 वाजता फक्त रेडिओ नगर 90.4 FM वर।
1: श्रोतहो, तुम्ही ऐकत आहात रेडिओ नगर 90.4 FM, आवाज तुमचा। आपला सांज रंग हा शो सुरू आहे आणि मी आरजे कोमल आहे तुमच्या सोबत। म्हणजे आज आहे जागतिक मानसिक आरोग्य दिन आणि याच दिनानिमित्त आपण जाणून घेणार आहोत काही अशा व्यक्तींचा प्रवास ज्यांनी मानसिक आरोग्याच्या समस्यांचा सामना केला, अनेक वेदना सहन केल्या आणि आज त्या त्यातून सावरून नव्यानं आयुष्य जगत आहेत। स्नेहालय संचलित मानसग्राम प्रकल्पातील या व्यक्तींनी आज आपल्यासोबत संवाद साधताना त्यांच्या आयुष्यातील व्यथा आणि अनुभव मनमोकळेपणाने सांगितलेत। चला ऐकूया त्यांच्याच शब्दात त्यांची कहाणी।
2: सबको मेरा नमस्कार। मेरी शादी हो गई थी, मेरे पति का पैर टूट गया था एक्सीडेंट में, तो मैं बहुत दुखी हो गई थी। मैं उनके दोस्त के पास से मैंने मदद लिया, तो उनके दोस्त ने मेरे को धंधे में डाल दिया था। फिर वहां से मैं बहुत लड़के निकली हूँ धंधे में, कम से कम मैं 8 महीना थी। 8 महीने के बाद मैं वहां से निकल गई, मेरे पैसे वगैरह सब रख लिए, वो लोग ने कुछ भी दिया नहीं, बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। फिर एक भाई मिला था मेरे को, वो भाई से मैंने मदद मांगा है कि मेरी ऐसी ऐसी परिस्थिति है, मेरे को कुछ मदद करो। तो भाई ने बोला ठीक है, मेरे पास न्यायालय की नंबर है, मैं वो नंबर देता हूँ और वहाँ पे कॉन्टेक्ट करो, फिर वहाँ पे जाओ। फिर मैं स्नेहालय में कॉन्टेक्ट किया और फिर आया। मैं एक महाराज को भी मानती थी, संतरामपाल जी महाराज को भी, तो अचानक स्नेहालय में आके काम करने लगी। अचानक से मुझे क्या हो गया, मैंने किसी के ऊपर हाथ उठा दिया था और वहां से फिर मेरे को मानसग्राम प्रकल्प में भेजे हैं। अभी मैं गोलियां वगैरह खाके मैं अच्छी हो गई हूँ और मैं चाहती हूँ कि जो भी जिस ऐसा बीमारी से लड़ रहे हैं वो सब मानसग्राम प्रकल्प में कॉल करे और अपने समाधान। थैंक यू।
1: मंडई, या व्यक्तींचे अनुभव ऐकताना एक गोष्ट जाणवते, प्रत्येकाच्या संघर्षामागे एक कहाणी असते, म्हणून कोणालाही दोष देण्यापेक्षा त्यांना समजून घेऊया, त्यांना आधार देऊया, कारण मानसिक आरोग्याची समस्या ही कमजोरी नाही आणि योग्य मदत मिळाली तर आयुष्य पुन्हा सुंदर होऊ शकतं। आपण अशाच

0: कैसी होती हमारी श्रद्धा, कैसा होता हमारा तप, और कैसे है तीर्थंकर परमात्मा का तप, क्या अंतर है एक तीर्थंकर के तप में, एक तीर्थंकर की साधना में, एक तीर्थंकर की आराधना में, एक तीर्थंकर के जीवन में, एक तीर्थंकर के दृष्टि में अंतर क्या है। सुधर्मा स्वामी परम सौभाग्यशाली स्वयं को महसूस करते हैं कि जो जीवन में अनुभव उनको आया है, जिस अनुभूतियों से उनका जीवन समृद्ध बना, उसी समृद्ध अनुभूतियों में से जितना बोल सकते हैं, जितना गा सकते हैं, उतना वो गा रहे हैं। जितना तीर्थंकर जानते हैं, उतना तीर्थंकर बोल नहीं पाते हैं। जानना असीम होता है, बोलना मर्यादा में होता है। कितना ही प्रयास करें तो पूरी बात कह नहीं पाते, जितना जानते उतना कह नहीं पाते। सुधर्मा स्वामी इसलिए कंटिन्यू उपमा की भाषा में बोलते जा रहे हैं, उपमा की भाषा बोलते जा रहे हैं। तो उपमा की भाषा में बोलने का मीनिंग है, एक शब्द बोल दिया कि पूरा कैरेक्टर, पूरी डिक्शनरी आ गई। जहां स्वयंभू उदहीन सेठे, बहुत समुद्र है, असंख्य द्वीप समुद्राहा, असंख्या द्वीप समुद्र, नो काउंटिंग, लेकिन सारे समुद्रों में एक समुद्र है जिसका नाम है स्वयंभू रमन समुद्र। थोड़ी सी जैन ज्योग्राफी, थोड़ा सा जैन बायोलॉजी, यदि आप उसको समझोगे तो ही उसको समझ पाओगे। जितने भी समुद्र है आपके जानकारी में, उस समुद्र में यदि पानी आना बंद हो गया तो समुद्र टिक पाएगा क्या? कहीं ना कहीं बाहर से पानी उसमें आता है, इसलिए जैसा पानी आता है वैसे वो बन जाते हैं। स्वयंभू रमन एक ऐसा समुद्र है जिसमें पानी का आगमन नहीं होता है, उसके पानी के आने के कोई स्रोत नहीं है कि बारिश का पानी उसमें आ रहा है, कि किसी नदी का पानी उसमें आ रहा है, कि किसी नाले का पानी आ रहा है, कि किसी द्वीप से पानी आ रहा है। कैसे पानी नहीं आता उसमें? इंद्रभूति गौतम में भगवान महावीर से पूछा, फिर उसको स्वयंभू रमन समुद्र क्यों कहते हैं, तो बड़ा गजब का उत्तर दिया, बहुत गजब का उत्तर है कि जितने उस स्वयंभू रमन समुद्र के परिसर में जितना आकाश है, जितना ऊपर का क्षेत्र है, उसमें जो आपकाय के जीव है। अभी चेन्नई के एक साइंटिस्ट ने, एक युवक ने कुछ साल पहले एक रिसर्च करके एक टेक्नोलॉजी डेवलप करी, क्योंकि वहां समुद्र का खारा पानी मीठा बना करके पीना पड़ता है। एक टेक्नोलॉजी डेवलप करी कि पानी में जो बाष्प है, हवा में जो बाष्प है, इन्वायरमेंट में जो बाष्प है, उसी को सक कर करके पानी बनाया जाए, वो प्योर पानी, उसमें कोई फिर प्यूरिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है। तो जो वातावरण में जो आपका के जीव है, वे ही सीधे स्वयंभू रमन में उत्पन्न होते हैं, बाहर से कहीं पर भी पानी वहां पर आता नहीं है। जब परमात्मा के तप की बात करने की प्रसंग आया तो सुधर्मा स्वामी को केवल स्वयंभू रमन समुद्र ही दिख रहा है। जनरली आप आगम में जाओगे तो तप को बहुत हो तो कोई ज्योति कहा जाता है, उत्तराध्ययन सूत्र में तवो जोई जीवो जोई ठानम, तो कि तप एक ज्योत है। तो फिर सागर है, ज्ञान का सागर समझ में आता है, प्रेम का सागर समझ में आता है, लेकिन तप की उपमा सागर के साथ करने नहीं, कैसे सागर के साथ करनी, सागर ऐसे सागर के साथ करनी कि जिसमें बाहर से पानी आता नहीं। यदि परमात्मा की तप साधना को समझना हो तो ये कंसेप्ट आपके सामने रखिए और आगे चलते चले जाइए। पांच महीने 25 दिन की तपस्या, और पांच महीने 25 दिन की तपस्या में निरंतर घूमना, कि जो राजकुमारी है, दासी बनी है और बीड़ियों से जकड़ी हुई है, उसकी खोज में घूमना, निरंतर घूमना, और घूम करके आने के बाद खड़े रह करके ध्यान करना, कोई ग्लानि नहीं, कोई थकान नहीं, कोई पित्त का प्रकोप नहीं, कोई वात का प्रकोप नहीं, या तो खाते पीते भी खड़े रह जाओ तो कमर ठिकाने लगती है, खाते पीते भी, और खाते पीते भी किसी को कंपल्सरी बेड रेस्ट हो जाए ना तो उसको पूछो बेड रेस्ट है कि बेड अरेस्ट है, क्या होता है? बेड रेस्ट में रेस्ट की फीलिंग आती कि अरेस्ट की फीलिंग आती? और कई बार तो आप जानते हैं कि फिर वो बेड सोल हो जाते हैं। व्हाट इज द रीजन? अगली थोड़ी सी जानकारी रख लीजिए आपके पास कि तीर्थंकर की तपस्या चौविहार होती है। क्या होती है? चौविहार, तिविहार तपस्या नहीं होती। और पांच महीने 25 दिन का जब चंदन बाला के हाथों से पारना हुआ तो वह उड़द के बाकुले थे, पानी नहीं था, नो वाटर। चार महीने की तपस्या, एक महीने के चार महीने की तपस्या कर करके जब आहार के लिए चले, जिरन सेठ की भावना बहुत थी, रस्ते में पुरन सेठ की हवेली आई, चार महीने का पारना है, और पुरन सेठ है, पुरन सेठ है नाम का, पुरन सेठ है, बाकी सब चुरन सेठ है। उसके आंगन में किसी को कुछ मिल जाए इतिहास ही नहीं, और उस सेठ की हवेली की दासी बचे हुए बासी चावल कूड़ादान में डालने जा रही, और कूड़ादान में डालने जा रही है, और उसके पास भगवान महावीर अपने हाथ करते कूड़ादान में डालना, भाई यही हाथ में दे दे वो बासी चावल। चार महीने का पारना, थाने ठंडो दूध आ जाए पारना में। हेलो, नहीं चले, थोड़ा सा ठंडो फल को भाना में आ जाए। ले भी लिया तो गैस हो जाएगा, पी भी लिया थोड़ा मन मारने लाजे लोकलास से शर्म से पी भी लिया तो गैस हो जाएगा। अब चार महीने के पारने में कोई बासी चावल खाए जाते क्या? गुरुदेव तो पारने के बाद जितने दिन की तपस्या उस दिन के प्लेन राइस खाने की मना करते होते दिन, और बासी चावल उसके साथ पानी नहीं, जितनी भी परमात्मा के पारने का जिक्र आता है वो जिक्र में पानी का जिक्र आता ही नहीं है। कई खीर का जिक्र आता है लेकिन पानी का जिक्र नहीं आता है, अपने क्या हाल हो जाएगी? और पारना के दिन तो पानी ज्यादा लगता है, अठाई के पारने के बाद, नौ के पारने के बाद जिन्होंने किया उनको पता है कि पारना किया कि बस वो ठंडो ठंडो पानी पी उनको बनवाए। ये कैसे पॉसिबल है? हाउ? जहां स्वयंभु उदहीन सेठ है, और उसके पीछे का सूत्र है कि उनका काय सर्ग, उनके ध्यान साधना, उनका पूरा शरीर, आसपास का जो रोमहार है, सबसे सशक्त हार है। और जितना जितना कमल हार करते हैं उसको डाइजेस्ट करने में एनर्जी कम ज्यादा लगती है और एनर्जी मिलती कम है। इसको अभी पिछले चतुर्मास में सहज चेकिंग हो गई, तो जो मांस खमन कर रही थी उसका जिंदगी में कभी 10 हीमोग्लोबिन नहीं आया था, 8 या 9 हीमोग्लोबिन रहता था, और मांस खमन में उसका हीमोग्लोबिन 13 हो गया। हेलो, तो खाने से हीमोग्लोबिन बनता है कि नहीं खाने से बनता है? मैंने पूछा डॉक्टर को, बोले मां साहब तपस्या में हीमोग्लोबिन बढ़ता है। मैंने कहा जिनको जिनको हीमोग्लोबिन कमी है उनको तपस्या कर देनी चाहिए। हाँ, जहां स्वयंभू उदहीन सेठ है, तपस्या का सूत्र है कि तुम्हारे शरीर के अंदर, तुम्हारे औदारिक शरीर के अंदर, तुम्हारे तेजस शरीर के अंदर जो सांस सीधी ऊर्जा ग्रहण करने का सामर्थ्य है उसको जागृत करना, उसको कहते तपस्या। परमात्मा की तपस्या का विज्ञान बहुत गजब का है, और सुधर्मा स्वामी जब उसको उद्घाटित करते हैं तब लगता है कि सुधर्मा स्वामी के चरण धोकर के पानी पी लो। ऐसे महावीर तो कभी मुझे मिले ही नहीं जैसे सुधर्मा स्वामी को मिले, कि तपस्या स्वयंभू रमन के समान, और स्वयंभू रमन का पानी खारा नहीं होता है। वो बिल्कुल एक सूरज जैसा पानी होता है, दूध जैसा नहीं, क्षीर सागर नहीं। हो जम्बूद्वीप पनपति में गया है कि स्वयंभू रमन के पानी का स्वाद कैसे है, केरी से, बोले एक सूरज जैसा पानी, बाहर से आता नहीं, अंदर से बिल्कुल वही का वही तैयार होता है, इंस्टेंट पानी है। वो कहां कहां से आएगा, जहां जहां से आएगा सब साथ में लेकर के आएगा, प्योर वाटर। और प्योर वाटर के साथ में अगली बात कही कि जब स्वयंभू रमन समुद्र में किसी प्रकार के साइक्लोन नहीं आते हैं, ज्वार भाटा नहीं आता है, और आपने तो तपस्या में साइक्लोन ज्यादा ही आते हैं, ऐसे खाते पीते साइक्लोन कम आते हैं, लेकिन तपस्या में साइक्लोन थोड़े ज्यादा आते हैं, लेकिन स्वयंभू रमन समुद्र में अनाकूल है। जहां स्वयंभू उदही न सेठ है, और बहुत कुछ है लेकिन घड़ी की तरफ भी देखता हूं, आगे 3 पंक्तियां और है। नागेशवा धर्निंद माहू सेठ है, नाग कुमार 10 बहुत है, और उनमें श्रेष्ठ कौन है? धर्निंद्र श्रेष्ठ है। क्यों भाई, क्या कारण? उसको क्यों श्रेष्ठ कहा? बाकी भी तो इंद्र है, उसको श्रेष्ठ क्यों कहा? उसके श्रेष्ठ का कारण है वो कृतज्ञ है। कौन है वो? अपने उपकारी को भूलता नहीं है। तुम कितने ऊंचे पद पर पहुंचे, कौन से देवलोक में पहुंचे, उसका सवाल नहीं है। धर्मेंद्र कोई वैमानिक देव नहीं है, तो भवनपति है, कोई पहला देवलोक दूसरा देवलोक भी नहीं है, भवनपति है, लेकिन उसको श्रेष्ठ कहा? रीजन सिंगल है,
1: कि एक पल के राजकुमार पार्श्व के उपकारों को भुला नहीं।
0: वहां जाकर के भी उपकारों को भुला नहीं है। एक बार वो दृश्य सामने लाई है कि कमठ जिसके ध्वनि में से उसको बचाया, वही कमठ अपने तपस्या के बल पर देव बनता है और पार्श्वनाथ पर वर्षा करता है, घनघोर वर्षा करता है। और सारे 64 इंद्र जो परमात्मा के जन्म कल्याणक में आए थे, जो परमात्मा के दीक्षा कल्याणक में आए थे, जो वापस केवल ज्ञान कल्याणक में आएंगे, वो सारे इंद्र मस्ती में सोए। किसी को एहसास नहीं हो रहा है कि पार्श्व पर उपसर्ग कर रहा है धर्मेंद्र, सॉरी कमठ उपसर्ग कर रहा है। वो किसको महसूस हुआ? एक धर्मेंद्र को महसूस हुआ। एहसास उनको होता है किसी के दुख का, उपकारी के दुख का, जिसके मन में कृतज्ञता होती है। कृतज्ञता जब गायब हो जाती है तो उपकारी की संवेदनाएं महसूस नहीं होती है। लेट मी रिपीट, मां बाप के इमोशन उन बेटों को महसूस नहीं होती है जो कृतज्ञ नहीं होते हैं। सहयोगी की अनुभूतियों को, उपकार की अनुभूति को भूल जाते हैं जो कृतज्ञ नहीं होते हैं। और ये जिन शासन है, इस जिन शासन में सम्यक्ति का लक्षण दिया कि वो कृतज्ञ है, कयन्नु, यदि कृतज्ञ है तो सम्यक दृष्टि है, और कृतज्ञ नहीं तो सम्यक दृष्टि नहीं है। आचार्य हरिभद्र सूरी ने सम्यक्ति के जो 5 लक्षण गिनाए उसमें सबसे पहला लक्षण है कयन्नु, जिसको अपने उपकारी के उपकारों का एहसास होता है तब सम्यक दृष्टि यानी धार्मिक है, और उपकारों का एहसास नहीं होता है तो तुम पुण्यशाली हो सकते हो। ध्यान में रखना, टिपिकल वर्ड है, तुम पुण्यशाली हो सकते हो लेकिन धार्मिक नहीं हो सकते हो। तुम सौभाग्यशाली हो सकते हो लेकिन धार्मिक नहीं हो सकते हो। तुम प्रसिद्धि के शिखर पर पहुंच सकते हो लेकिन धार्मिक नहीं हो सकते हो। जिन शासन में धार्मिक होने का अधिकार उसी को दिया जो कृतज्ञ है, नागेशवा धर्मिंद माहु सेठे, नाग कुमारों में श्रेष्ठ धर्मेंद्र कुमार है। क्यों? क्या उसके पास वैभव ज्यादा है? क्या उसके पास एक्स्ट्रा पुण्य है? क्या उसके पास कोई एक्स्ट्रा वैकुर्य शरीर है? क्या है उसके पास अलग सामर्थ्य? कोई मटेरियलिस्टिक सामर्थ्य उसके पास ज्यादा नहीं है, कोई बाहर का सामर्थ्य उसके पास ज्यादा नहीं है, लेकिन अंतर का जो वैभव धर्मेंद्र के पास है वो कुछ अनूठा है। कि मेरे पर उपकार करने वाले उपकारी पर कष्ट आया है, उपकारी ने उसको बुलाया नहीं, उपकारी ने उसको बुलाया नहीं। बिन बुलाए अपने उपकारी का जो सेवा भक्ति करता है वो धर्मेंद्र है। थे क्यों मारा सत्ता ने कई जरूरत है भक्त। अभी तो मैं थोड़ा सा शांत हो गया हूं, बिल्कुल तुम्हें नहीं चुभे ऐसी भाषा बोलता हूं अभी तो, फिर भी कई लोगों को चुभ जाती है। पहले तो मैं, मेरे मुंह से शब्द निकला मुझे तीर निकला। अभी उस दिन सज्जन मासी जी आए थे, जिक्र किया और आपको बताऊं कि मैं 2006 में जब बहुत सालों के बाद पुनः पहुंचा, उस समय प्रवर्तक सिंह जी भी शेष काल में उनके सेवा में ही था, तो ऋषिक भाव के घर पर रुका हुआ था। तो बहुत सालों के बाद आया तो प्रवर्तक सिंह लगा के लोगों का परिचय नहीं है, परिचय करा दो। तो सज्जन मासी जी दर्शन के लिए आए, तो बोले सज्जन मासी जी इनका चंदन वाला महिला मंडल है, ये है वो है। मैं मुझे पता था, इसलिए मैंने कहा ठीक है। सज्जन मासी जी ने कहा कि मारे साहब कोई आदेश, कोई आदेश हो तो फरमाओ, अच्छी बात है ना। लेकिन वो प्रवीण ऋषि को बोला उन्होंने, और प्रवीण ऋषि ने उनको जवाब दिया, मुझे ऑर्डर पर काम करने वाले नौकरों की जरूरत नहीं है। संदीप सिडो, ऑर्डर पर काम करने वाले नौकर की जरूरत नहीं है। भक्त तो वो होता है जो अंतर की प्रेरणा से काम करता है। अब क्या बोलेगी बेचारी मासी, धन्यवाद दो क्या, मैं इसी भाषा नहीं बोलू, हाँ थी इतना सुखी हो गया है ना। नहीं तो कहता रहे मार साहब, कहता रहे मार साहब, कहीं आज्ञा हो तो फरमाओ, कहीं हुक्म हो तो फरमाओ। मैं अपना मुस्कुरा कर आगे निकल जाता हूँ, कोई रिप्लाई भी नहीं देता हूँ और कुछ कहता भी नहीं उनको, काम निकल जाता हूँ, आगे निकल जाता हूँ। नागेशवा धरनिंद माहू सेठे, पार्श्व ने धर्मेंद्र को याद नहीं किया, पार्श्वनाथ भगवान ने याद नहीं किया कि भाई मुसीबत में फंसा हूं, जरा मदद करने के लिए आ जा, जरा हेल्प करने के लिए आ जा, जरा इतना सो काम कर दे मारो। कृतज्ञ व्यक्ति को बुलाने की जरूरत नहीं होती है, और कृतज्ञता नहीं होती है तो बुलाने के बाद भी आएगा उसकी गारंटी नहीं होती है। अवधि ज्ञान सबके पास था ना भैया, चौसठ इंद्रों के पास अवधि ज्ञान था, और मुझे लगता है कि शक्रेंद्र को तो नीचे आने की भी जरूरत नहीं थी, वो तो वहां से बैठे बैठे भी मेघमानी को ठिकाने पर लगा सकता था। कृतज्ञता, कृतज्ञता तुम्हें श्रेष्ठ बनाती। ठानांक सूत्र में गया है कि गुण कैसे प्रकाशित होते हैं और गुण कैसे नष्ट होते हैं, पांच बोल गए, और उसमें गया जो कृतज्ञ होता है उसके गुण प्रकट होते हैं और जो कृतज्ञ होता है उसके गुण समाप्त होते हैं। तो धर्मेंद्र का जिक्र इसलिए, उसके पास बाहर का वैभव ज्यादा नहीं है। श्री कृष्ण सुदामा के कच्चे पोहे मालपुवे जैसे खाता है, शायद मालपुवे में जो रस नहीं आया होगा वो सुदामा के पोहे में रस आया। जब दुर्योधन को समझौते का प्रपोजल देने के लिए गया, वहां से चल करके विदुर के घर पर पहुंचा, दुर्योधन की मेजबानी तैयार थी, बोले नहीं तेरा ये मसालेदार चौदर भवन स्वादिष्ट भोजन नहीं लूंगा मैं, और विदुर की कुटिया में पहुंचा, और विदुर की पत्नी श्री कृष्ण को आंखें देख करके खुशी में सब भान भूल गई, इतनी भान भूल गई कि केले दे रहे खाने के लिए और छिलके श्री कृष्ण को देती है और केले स्वयं खाती है, छिलके श्री कृष्ण को और केले स्वयं खा रहे, भान भूल गई। विदुर से आया, बोले अरे क्या कर रही है भागवती, बोले छिलके खिला रही श्री कृष्ण को, और फिर उसको भान आया कि मैं क्या खिला रही हूं, और फिर उसने केला देना शुरू किया, और श्री कृष्ण ने विदुर को कहा कि जो साथ छिलके में था वो साथ केले में नहीं है।
1: जहां स्वयं भू उदहीन सेठे नागेशवा धरनिंद माहु सेठे। एक गुरुदेव का एक प्रसंग याद आ रहा है। चांदा से गुरुदेव मेरी की तरफ पधार रहे थे, डूली में विहार था। अभी भी वो जब हम जाते तो वो खेती रास्ते में लगते ही वहां के लोग रास्ते पर आकर दर्शन करते हैं। आप तो पुरानी झोपड़ियां चले गई, बंगले बन गए। वहां गुरुदेव शाम को पहुंचे, डोली लेकर के शाम को पहुंचे। गुरुदेव कभी शाम को आहार करने का सवाल नहीं, बस वो दवा के लिए दूध ले लिया, ले लिया। अब उस किसान के घर पर वरना क्या बेसन और पिटलन भाकर, पिटला भाकर। अब उस परिवार की भावना थी कि गुरुदेव आमच्या घरची थोडीशी घेतील तर धन्य होऊन जाऊ। अब वो कनक ऋषि महासमन की भावना लेकर के लेकर आए वो पिटला भाकर। गुरुदेव कृपा करो, मैं अपना रोमे मैंने कहा क्या कहते गुरुदेव को, क्या पिटला भाकर अभी शाम को। गुरुदेव ने दूध का कटोरा नीचे रखा और वो रोटी ली, बेसन लिया साथ में और खाया। अजी आना पता नहीं, मैं तो सुदर्भा स्वामी को बार बार महसूस करता हूं, उनको महावीर धरती पर होते हुए महसूस हो गए। हमें गुरुदेव को महसूस अब होता है, वही नहीं आज पता चलता है। नांगे सुवा धरनिंद माओ सेठे खो दये वा रसवे जयंते। जैसा इक्षु रस है सारे रसों में मीठा रस, इक्षु रस, शक्कर नहीं, गुड़ नहीं, क्या इक्षु रस, खो दये वा रसवे जयंते। वो जैसा रस है इक्षुदस का, तवो आहाने मुनिवे जयंते। तीर्थंकर महावीर का तप वैसा है, तीर्थंकर महावीर के तप को महसूस करना हो तो उस तप को स्वयंभू रमन समुद्र के रूप में देखना चाहिए। तीर्थंकर परमात्मा के उस तप को महसूस करना हो तो धरणीधर की कृतज्ञता के अखास सागर को देखना चाहिए। और वो धरणीधर आज भी जिन शासन की धारणा है कि प्रभु पार्षणा के जो भक्ति करता है धरणीधर उनकी सेवा करता है। धर्मेंद्र की भक्ति करने वाले के धर्मेंद्र सेवा नहीं करते, वो तो तुम्हारे मुनिम है कि जो मुनिम की प्रशंसा करो तो मुनिम खुश होता है। धर्मेंद्र तो ऐसा मुनिम है उसकी प्रशंसा करो तो देखता ही नहीं आंख उठा करके। उसकी प्रभु की प्रशंसा करो, उसकी प्रभु की भक्ति करो तो दिल खोल के काम करता है। थाने किरी प्रशंसा सोए स्वयं के कथा का माँ बाप रे। चढ़ी चुप अपने प्रभु की प्रशंसा, अपने गुरु की प्रशंसा की, स्वयं की प्रशंसा किसके अभिनंदन मध्य निकलने चाहिए। गुरु के ही अपने बहुत सारी बातें और तुम अपने मां बाप और गुरु को भूल गए, याद रखना तुम्हारे बेटे और तुम्हारे चेले तुमको याद नहीं रखेंगे कि तुमने ही रास्ता बताया उनको। तुमने ही रास्ता बताया।
0: क्या अपने उपकारी को याद रखने की जरूरत नहीं है?
1: किसने सिखाया?
0: कभी बोलते समय जरा वाक्य रचना को तरफ ध्यान दीजिए। बहू मारा बाप से मैंने कई मिलियों नहीं रहे, यह सब मैं कमाई हुए, धन्य हो गया। मार साहब बहुत सारे लोग मिलते, मैं सुनता हूं भैया, थोड़ा सा आवाज खोल रहे, खुल आवाज पकड़ो, मैं सुनता हूं। मार साहब कहीं नहीं दिया बाप पापा मैंने, वो भूल जाना कि मां बाप जन्म दिए, कहीं नहीं दिए बोले। अब वो नहीं जाने पूछ, हाँ कहीं नहीं दी, ऐसे ही बोलते हैं। आप कई जनों के मुंह से सुनोगे, कई जनों के मुंह से सुनोगे वाक्य, मां बाप से मुझे कुछ नहीं मिला, ये तो मारा साहब सब मैं खड़ो करियो है। मैं देखता रहता हूं, सुनता रहता हूं, क्या करूं अब उसके सामने, उसको कैसे बोलूं? तुझे जन्म नहीं देते तो क्या खड़ा करता, कैसे बोलूं उसके सामने? यदि बोलूंगा तो उसको लगेगा मारा साहब क्या बोल रहे हैं। कितनी बार स्वयं को रोकना पड़ता है, थाने झूठ बोलने से रोकनो पड़े, मैंने सत्य बोलने से स्वयं ने रोकनो पड़े। हाँ बहुत धन्यवाद तो देव, बिल्कुल देना ही चाहिए इस बात पर धन्यवाद ना। कही तो मारा बाप को नहीं कही तो थर कने घनो है। नांगी सवा धरनिंद माहु सेठे, आखिरी पल तक गुरुदेव के मुंह से एक ही शब्द निकलता था कि गुरुदेव की कृपा है।
1: एक बार उनके मुंह से नहीं सुना कि मैंने परीक्षा बोर्ड खड़ा किया है,
0: एक बार नहीं सुना। सेकंड कभी नहीं सुना। गुरुदेव की कृपा है, और वो केवल बोलने के शब्द नहीं थे उनके, ये उनके अनुभूति से पगे हुए शब्द थे, विशिष्टाचार के शब्द नहीं थे। शिष्टाचार के शब्द तो मैं सुनते रहता हूं, मार साहब आपकी कृपा है सुनते रहता हूं मैं, लेकिन उसमें फीलिंग का, अंदर के स्पंदन का संगीत नहीं होता है। शब्द तो होते हैं, स्पंदन नहीं होते हैं, और जिसमें स्पंदन चैतन्य का नहीं, प्लीज हा कभी बोला नहीं हो बोल रहा हूं, जिसमें अंदर के भक्ति भाव समर्पण के स्पंदन नहीं, वे शब्द मुर्दा है, मुर्दा। और मुर्दा कितना ही सुंदर हो, मुर्दा कितना ही प्यारा हो, उसको या तो जला देना चाहिए या दफना देना चाहिए। यहां आज कार्यक्रम चल रहा था ब्लिसफुल कपल का, और मैंने कल उनको एक टास्क दिया था, अपने साथी के लिए अभिनंदन पत्र लिखकर के लाने के लिए कहा था। बड़े सुंदर सुंदर अभिनंदन पत्र आए, ऐसे ऐसे संबोधन दिए उन्होंने कि मुझे भी लगा कि अपने को नया नॉलेज मिल रहा है। अब उसमें एक अभिनंदन पत्र में पढ़ रहा था, अब मेरा तो कोई काम नहीं, तीर्थ शिष्य होते तो पहले बताते तुम्हारे सब ये पिक्चर का सॉन्ग है, अब मुझे पता नहीं। तू है तो दिल की धड़कन है तू आता है तो सांस आती। मैंने कहा वाह भाई क्या बात है, अब मैं नहीं जानता था एक पिक्चर का गीत है, वो पार्टिसिपेंट बताया मैं, वो पिक्चर का ही सॉन्ग है। मैंने उसको वापस लौटा दिया, मैंने कहा भाई अभिनंदन पत्र तेरे हृदय में से जन्मा होना चाहिए, जेरॉक्स मशीन का नहीं चाहिए। मैंने
1: ऐसे कल भी मैंने उनको कहा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बना करके मत लाना, एआई से बना कर मत लाना। तो उसने एआई से नहीं लाया लेकिन पिक्चर से लाया था, मैंने रिटर्न कर दिया। इसलिए जब भी कोई बोलने के लिए खड़ा रहता है ना और वो पढ़ करके बोलना शुरू करता है तो मैं सो जाता हूं, है कोई मतलब ही नहीं ना, नहीं उसमें कोई मतलब ही नहीं। तुम्हारा गीत तुम गुनगुनाओ तो सुनने में मजा आती है, तुम्हारा गीत तुम सुन गुनगुनाओ तो सुनने में मजा आती है। उधार लिया हुआ गीत तुम सुनाते हो तो लगता है कि कर्ज बाजारी है। सॉरी हाँ भाई, किसी को कोई हर्ट हो रहा हो तो, है ना, कि आई नो, मुझे अच्छी तरह से पता है मैं गाता नहीं हूँ, गाना मेरा नहीं है। इसलिए भाई उसकी अपनी मोनोपोली बनी रहनी चाहिए, तो मैं गा सकता हूँ ऐसे, पर इसलिए नहीं गाता कि उसकी मोनोपोली सुरक्षित रहे, है ना। मुझे अच्छी तरह से पता है कि मीरा ने कभी सुरदास के भजन नहीं गुनगुनाए, मीरा ने कभी सुरदास के भजन नहीं गुनगुनाए, संत तुकाराम में कभी ज्ञानेश्वर के गीत नहीं गुनगुनाए, ना कबीर ने किसी के दोहे गुनगुनाए। इन्होंने गीत गाए तो अपने अंतर से जन्मे हुए गीत ही गाए, चाहे वो जनाबाई हो, चाहे वो मुक्ताबाई हो, चाहे सोपान देव हो, चाहे जो हो, इन्होंने दूसरों के गीत नहीं गुनगुनाए, इन्होंने अपने अंदर से जन्मा हुआ गीत गुनगुनाया। इसलिए लगता था कि वो गीत उनका है, उसमें उनकी अनुभूति बोल रही है। अठे गीत भी गा उन्हों रहे और वो भी स्वयं रो नहीं रहे। अगली बात बोलू कि आज थोड़ा खुल्लस हो गया है ना। आजकल लोग क्या है, साधु साधु काम निकालते हैं, क्वेश्चन पेपर निकालते हैं, है ना। वो क्वेश्चन पेपर यहां बैठी हुई ना, इसमें बहुत सारे किसी न किसी का क्वेश्चन पेपर सवाल करते ही रहते हैं। नहीं, आप में भी कुछ है, और फिर वो सवाल जब उनको कहीं नट जाता है ना तब तो पूछने को आते हैं। मैं उनके चेहरे की तरफ देखता हूँ, थोड़ा सवाल है कि किताब वाला सवाल है, नहीं नहीं वो क्वेश्चन पेपर आया रहे है। मैं क्यों क्वेश्चन पेपर आया रहे थे स्टडी करें क्या रहे, उन्हें जब मैं नहीं दूंगा मैं क्यों, है ना। तो इन लोगों के क्वेश्चन भी ओरिजिनल नहीं होते, क्वेश्चन भी कहीं से विकत लाए हुए क्वेश्चन होते हैं। सुधर्मा स्वामी विरथी जो है ये उनके अंतर से जन्मी हुई विरथी है, और मैं तो इस उम्मीद में आपके साथ बात कर रहा हूं कि सुधर्मा स्वामी की अनुभूति के महावीर कि एक पंक्ति तुम्हें और मुझे महसूस हो जाए जीवन धन्य हो जाएगा, एक पंक्ति महसूस हो जाए, इस अर्थ की एक पंक्ति में महावीर महसूस हो जाए धन्य हो जाएंगे। नागेशवा धरणिंद माओ सेटे खो दयवा रसवे जयंते तवो वाहने मुनि वे जयंते। ये सुधर्मा स्वामी के विरुद्ध ही है जिसको शास्त्र के रूप में देवर्धि गणिक क्षमाश्रम ने स्थापित कर दिया, शास्त्र के रूप में, आगम के रूप में। मैं फिर दोहरा रहा हूं, पहले भी एक बार मैंने कहा था, किसी का गीत शास्त्र बन जाए क्या गहराई होगी उसमें। ऐसी इस विरथी के अनुष्ठान के लिए आज गुगले परिवार चिचुंडी का, और चिचुंडी के इसलिए उन्होंने चिचुंडी को यहां ले आई है ना, कर्णावट परिवार
2: गांधी परिवार
1: और गांधी परिवार। कर्णावट परिवार की तो आज पंक्ति में पढ़ा तब पता चल के सावड़ी से आता है, और मुझे नहीं लगता है कि मैंने कभी इनको नाम नहीं पूछा, अपना अपना तो है नहीं, तो कठो आवे कहीं आवे अकाउंट हिज को नहीं अपना गणेश,
0: लेकिन जहां तक मुझे स्मरण आ रहा है कि अब तक एक दिन भी नागा नहीं है, सावेड़ी से आ रहा है। ऐसे बहुत सारे श्रोता हैं, लेकिन आज इनका जिक्र है इसलिए गांधी परिवार से। और कल के लिए है दीपक जी पारस जी कासवा परिवार, रोहित जी सुभाष जी मुत्था परिवार, हीरालाल जी अनिल जी वसंत जी पोखरना परिवार, कल के गाथा के लिए। और आज आपके धर्म सभा में हमारे चेन्नई वाले भी हैं, बेंगलोर वाले भी हैं, और चेन्नई और बेंगलोर वालों का तो नाम लेते लेते बाबू सेठ कहीं नींद में भी उसको वही नाम आएंगे। अब तो आज हुबली वाले भी हैं, आ जाइए। और ध्यान में रखिए 20 तारीख से जिनेश्वर की वाणी की आराधना शुरू होने जा रही है। सागर आज का गड़बड़ है,
3: उसके बीच
0: थोड़ा मोकड़ा नहीं बटा।
3: मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ
0: थोड़ा
3: कि 18 तारीख को उत्तराध्यायन सूत्र की शोभा यात्रा सत्ता कॉलोनी से
0: एक मिनट बाबू सेठ
3: निकलने वाली है, और उसमें हम लोग जितने भी हमारे युवा ग्रुप है, महिला मंडल है और अन्य ग्रुप है, सभी ने उसमें शामिल होना है।
0: एक मिनट बाबू सेठ, एक मिनट ये भक्ति यात्रा सत्ता कॉलोनी से शुरू होगी, है ना? कहाँ से शुरू होगी? सत्ता कॉलोनी से शुरू होगी। बाबू सेठ ने कल ही बता दिया कि समर्पण चतुर्मास समिति के ट्रस्टी वहां से इसको निकाल रहे हैं, ऐसा वो कह रहा है। मैंने बोले कि समर्पण चतुर्मास समिति के ट्रस्टी इसलिए मेरा अधिकार में नहीं छोड़ा, और कोई आता तो अधिकार छोड़ने वाला ये बंदा नहीं था। 18 तारीख की ये भक्ति यात्रा मैंने इसलिए बाबू सेठ को रोका है कि श्रुत आराधना के भक्ति यात्रा में पहली बार ऐसा हो रहा है कि चार परिवार मिलकर के भक्ति यात्रा निकाल रहे हैं। संयोजन चार भक्ति यात्रा का पहली बार चार परिवार कर रहे हैं। हमेशा चाहे चेन्नई हो, चाहे बेंगलोर हो, चाहे पुना हो, चाहे और संभाजी नगर हो, चाहे इंदौर हो, एक ही परिवार उसका ऑर्गेनाइज करता था। तो बाबू सेठ तेरे समर्पण चतुर्मास समिति के ट्रस्टियों को कहना चाहता हूं कि चार परिवार है, इसका मतलब चार इंजन है। चार गुना इधर तुमने भक्ति यात्रा का संयोजित नहीं किया ना, तो फिर माइक मेरे पास है, कान तुम्हारे पास है।
3: वो उतना नहीं, चार गुना जो भक्ति यात्रा निकलती है उससे चार गुना निकलेगी।
0: हाँ तो वही कह रहा हूँ ना, नहीं निकली तो मैंने कहा कि माइक मेरे पास है, कान तुम्हारे पास है, फिर है ना। और मुझे लगता है जहां तक मैं जानता हूं, इस समय यदि जो लाभार्थी परिवार बन रहे हैं उत्तराध्ययन सूत्र के आराधना के, उस आराधना के तैयारी में कि हमारी वंश की, हमारे गोत्र की या आराधना की यात्रा की तैयारी में इस समय एक नंबर पर कोई है तो गांधी परिवार है, और उसका पूरा श्रेय जा रहा है आशीष गांधी को। अभय जी गांधी, आशीष जी गांधी, इन लोगों ने इतना नियोजन किया। कई तारीख है भोधारी? 25 तारीख। वो 25 तारीख को, उसको तो जब से 25 तारीख तय करी है उसको सपने में भी 25 तारीख दिखती है और दिन में भी 25 तारीख दिखती है। जब भी वो मेरे साथ बात करता है ना, मार साहब ये तैयारी हो गई, वो तैयारी हो गई, दूसरा सब्जेक्ट ही नहीं। इसलिए मुझे लगता है कि जो लाभार्थी परिवार है उसमें इस समय कोई अग्रमी है तो गांधी परिवार है। और बड़े कौतुक से वो कहता है कि मां साहब नगर में हमारे 1000 फैमिली है। अब 1000 फैमिली की भक्ति यात्रा निकलेगी तो 1000 की होगी, उसको अपने क्या बोलने की जरूरत है। बाकी जो परिवार लाभ लेने वाले उसमें बोरा परिवार भी है, बोरा परिवार भी है, पोखरना परिवार भी है, नाम मेरे पास जो आए हो वो छोटा के मोटा मैं नहीं जानता। मैं ये अनिल भोर बाबू सेठ एक दूसरे को छेड़े नहीं तो एक दूसरे के साथ इनकी एक दूसरे को पक्का छेड़ेंगे। और अपनी अब किसके साथ किसकी बात पर सात दिन किसी बात पर चुप बैठे समझ में नहीं आता।
4: वो छेड़ने की वजह से तो मेरी वो भक्ति यात्रा कैंसिल करके उनको देना पड़ी।
0: बाबू सेठ कैंसिल नहीं करी है, नहीं नहीं कैंसिल नहीं करी है, आपको दूसरी भक्ति यात्रा का लाभ दिया है। ये तो समय में तो उस दिन की भक्ति यात्रा थी, अब तो स्पेशल बोरा परिवार की भक्ति यात्रा आपके पास है। कैंसल शब्द नहीं है ना, रिप्लेस है। तो मैं सारे जो जो इस परिवार के 20 तारीख से लेकर तो 10 तारीख तक जो श्रुत आराधना के होस्ट बनने जा रहे हैं उन सारे परिवारों से आग्रह करता हूं कि जल्दी से मेरे से संपर्क करें। वापस कह रहा हूं, जल्दी से मेरे से संपर्क करें। यदि उनके गोत्र की बैठक मेरे साथ

से आगम स्वीकार करना नहीं। हाँ मीटिंग आसे चदारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नतोधम मंगलम चदारी लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहू लघुत्तमा केवली पन्नतोधमो लघुत्तमा चत्तारी शरणं भवज्जामि अरिहंते शरणं भवज्जामि सिद्धे शरणं भवज्जामि साहू शरणं भवज्जामि केवली पन्नतम धम्मम शरणं भवज्जामि चार मंगल चार उत्तम चार शरण दुख हरण सुख करण और न शरण कोई जो भव्य प्राणी करे आराधन अक्षय अमर पदोय। आज बेंगलोर का श्री संघ भी आया हुआ है, चेन्नई से भी आए हुए, हुबली से भी आए हुए है, और चंद्रभान जी कर्नाट इनके जन्मदिन के प्रत्यर्थ चिचुंडी अनंत तीर्थ को 1,11,000 का उन्होंने समर्पण किया है।

0: एकाच ठिकाणी
1: स्नेहालय इंग्लिश मीडियम स्कूल या ठिकाणी स्नेहालय इंग्लिश मीडियम स्कूल एफ ब्लॉक 239 MIDC श्री टाइल्स चौक अहिल्यानगर संपर्क क्रमांक 98 23 89 34 39. ऐकत रहा रेडिओ नगर 90.4 FM आवाज तुमचा.

0: तो सोचो कि मैं भी चुप और तुम भी चुप, तो किसने मचाया ये शोर, कौन है, कौन है भाई?
1: अरे ये तो पर्दा है।